अगर आपके घर अगले कुछ दिनों में कोई BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर आ जाए तो घबराइए मत। आप सुन रहे हो RJ अदनान के साथ MGM 90.8 FM। क्या है ना, दरअसल 30 जून से 29 जुलाई तक महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट स्पेशल वेरिफिकेशन अभियान शुरू है। तो इसके तहत BLO आपके घर आएगी, आपकी जानकारी चेक करेंगे और एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा आपको, और फॉर्म भरने के बाद उसकी एक कॉपी आपके पास जरूर रखिएगा। और अगर आपका या आपके परिवार में किसी भी मेंबर का नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं है तो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, 10th का मार्कशीट, रहवासी प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, सरकारी और सार्वजनिक उपक्रम या तो फिर आधार कार्ड भी जरूरी है। इनमें से एक डॉक्यूमेंट भी अगर आपके पास हो तो वो आप दिखा सकते हो, क्योंकि यही आपकी एक आइडेंटिटी होती है। तो इस पूरे उपक्रम का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो वोट देने का हकदार है उनका नाम वोटिंग लिस्ट में आ जाए, और अगर किसी की डेथ हो गई है तो उनका नाम उस लिस्ट से निकालने का ये काम है। अगर BLO आपके घर पर आए तो उनको थोड़ी मदद कीजिएगा, क्योंकि आपका वोट ही आपकी पहचान होती है और आपकी आवाज होती है। एंड सुनते रहिए।

खुशी क्या होती है पता है बचपन की, जब हम सुबह स्कूल के लिए तैयार हो जाते थे, नहा धोकर 7 बजे स्कूल चले जाते थे और स्कूल जाने के बाद पता चलता था कि स्कूल की छुट्टी है आज, किसी वजह से आज स्कूल बंद रहेगा, तो यार वो जो खुशी होती थी ना चेहरे पर, भागते भागते वापस घर आना, मम्मी को बोलना कि मम्मी आज तो छुट्टी है स्कूल की, और उसके बाद मम्मी ने जो बनाया हुआ टिफिन था ना, वही टिफिन ना कार्टून देखते देखते खाना, उसमें जो खुशी थी ना, वो खुशी आज के बच्चे ना तो एकदम मिस करेगी यार, वो खुशी वो आज के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। आज तो यार स्कूल अगर बंद है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है, क्योंकि यार जो 90s के किड्स हैं ना, तो ये खुशी का मजा उन्होंने लिया है, मैंने तो लिया है, और मुझे तो इतनी खुशी होती थी, आय हाय हाय, जैसे मैं घर पर आया ना तो एकदम चिल्लाता था कि मम्मी आज तो छुट्टी है यार। वैसे यार वो खुशी बचपन वाली जिंदगी में वापस कभी नहीं आती है, तो 90s के किड्स याद आ गए ना आपको भी आपके बचपन की, आपके स्कूल की। और भी ऐसी ना तो 90s की बातें जानने के लिए, अपने 90s के दौर में जाने के लिए मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ संडे स्पेशल शो 90s वाला शो सुनना ना भूले, सुबह ठीक 9 से संडे के दिन। सो वहां पर बस हम 90s की बातें करते हैं, कोशिश करूंगा कि मेरी बातों से ना तो आपको 90s के एक दौर में लेकर जाने की, तो भूलना मत 90s वाला शो सुनने संडे सुबह 9 बजे, और फिलहाल मेरे साथ सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

हाँ जी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया। All is well. RJ and Nanaka morning show. Freshness light radio ka flow. On MGM 90.8 FM. RJ Adnan आपके साथ है on MGM 90.8 FM. बड़ा वक्त हो चुका है मेरा था कहने का, यानी कि RJ Adnan आपके साथ था, टाप टाटा बाय बाय कर रहा है, मैं तो चला अब अपनी गली। आज का शो आपको कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा, तो आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा DMKG का इंस्टा पर, RJ Adnan इस इंस्टा पेज पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। इस नंबर पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, फॉलोअर्स भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए MGM 90.8 FM। मिलते हैं अगले अपने शो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: इंजिनियर नव्हे तर फ्युचर रेडी प्रोफेशनल बनायचंय.
1: मग निवडा MGM विद्यापीठातील केमिकल इंजिनिअरिंग. सोबत शिका AI इन केमिकल इंजिनिअरिंग, AIML, डेटा सायन्स, बिझनेस अनालिटिक्स आणि फिनटेक स्पेशलायझेशन.
0: जागतिक दर्जाच्या लॅब्स, हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि NEP 2020 नुसार आधुनिक अभ्यासक्रम.
1: डेडिकेटेड ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट, MNC कोलॅबोरेशन, इंडस्ट्री व्हिजिट्स आणि टॉप केमिकल इंडस्ट्री मध्ये इंटर्नशिप.
0: लिमिटेड सीट्स. आजच MGM विद्यापीठ केमिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटला भेट द्या किंवा कॉल करा 9891-7844.
2: क्या ऐसा करियर चुनना चाहते हैं जहां आपके भविष्य के साथ समाज का भी भविष्य बदले? तो आइए MGM यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस में, जहां डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस विद रिसर्च और अल्सो MSc स्पेशलाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन. एडमिशन ओपन फॉर 2026-27. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 7620322186 और 7017085546. MGM University, NCT, Gujarat, Sambhaji Nagar.
3: Cosmetic technology cha UG ani PG sathi admission milva. BTech ani MTech cosmetic technology sathi MGM University madhe basic and applied sciences cha antargat aajach apla pravesh nishchit kara.
4: Ja madhe sarva prakarcha cosmetic products che formulation, raw materials, tanchi chemistry ani analysis sobatat new advanced technology hi shikhnyas milel. Shivay vividha namankit companies madhe placement chi hami suddha.
5: Admissions open for 2025-26. MGM University and 6 Sidko. Visit mgmu.ac.in. Call 9503082913.

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है FGM 90.8 FM।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एफएम 90.8 FM।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात।

की मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूं साथ तेरे, मैं हूं साथ तेरे,
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
3: MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहा होगा। अगर दिन थोड़ा व्यस्त रहा हो तो अब समय है कुछ पल खुद के लिए निकालने का। दिन भर की भागदौड़ को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, गहरी सांस लीजिए और हमारे साथ इस खूबसूरत शाम का आनंद उठाइए। शाम का समय अपनेपन, सुकून और नई एनर्जी का एहसास कराता है। यही वो पल होते हैं जब हम अपने परिवार, दोस्तों या अपने पसंदीदा गानों के साथ कुछ यादगार लम्हे बिता सकते हैं। तो आने वाले कुछ समय तक कहीं मत जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं बेहतरीन गाना, दिलचस्प बातें और ढेर सारी मुस्कानें जो आपकी इस शाम को और भी खास बना देगा। चलिए इस खूबसूरत शाम की शुरुआत करते हैं एक शानदार गाने के साथ। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर पल संगीत, मस्ती और खुशियों से भरपूर है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा और आपसे कहना चाहती हूं बहुत ही प्यारी सी गुड इवनिंग, हैप्पी गुड इवनिंग आप सभी को। बोला कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब अपने काम, जिम्मेदारियों और सपनों में इतने व्यस्त

हो गए हैं कि खुद से मिलने का समय ही नहीं निकाल पाते। लेकिन अगर हम हर दिन सिर्फ कुछ मिनट अपने मन को शांत करने के लिए निकालें तो जिंदगी थोड़ी आसान और खूबसूरत लगने लगती है। आध्यात्मिक होने का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है, इसका मतलब है अपने मन में शांति रखना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, माफ करना और हर छोटी सी खुशी के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना। जब मन शांत होता है तो मुश्किलें भी छोटी लगने लगती है, गुस्से की जगह मुस्कान आ जाती है और तनाव की जगह सुकून महसूस होने लगता है। तो आज से एक छोटी सी शुरुआत कीजिए, हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालिए, गहरी सांस लीजिए, मन को शांत रखिए और अपने आसपास खुशियां बांटने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ज़रूर आएगा। इसी खूबसूरत सोच के साथ अब वक्त है एक प्यारे से गीत का। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो शो दिल से, ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज तो बहुत से लोगों का व्रत भी होगा, तो बताइए क्या हाल चाल है आपका? सब ठीक ठाक चल रहा है ना यार? मतलब आज तो सभी का एकादशी वाला फास्ट है। ये व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने मन को शांत रखने, धैर्य रखने और सकारात्मक सोच अपनाने का भी एक मौका होता है। इसलिए अगर आज आपका व्रत है तो अपना ध्यान भी रखिए, समय समय पर पानी पीजिए, आराम कीजिए और शाम को प्यार से व्रत खोलिए। मेरा मतलब है कुछ फरहाल की चीज़ें खा लेना आप शाम को। और जिनका व्रत नहीं है वो भी अपने परिवार और दोस्तों का ख्याल रखिए। छोटी छोटी बातें और अपनापन ही रिश्तों को और मजबूत बनाता है। तो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और इस प्यार से शाम का आनंद लीजिए। अब समय हो गया है एक खूबसूरत गीत का, जो आपकी शाम को और भी यादगार बना देगा। बने रहिए हमारे साथ इन द शो दिल से, क्योंकि यहाँ हर पल है संगीत, मुस्कान और ढेर सारी बातों का। ओनली ऑन MJ 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। वेल यार, अभी जो भक्ति से भरे खूबसूरत गीत के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उस गाने का नाम है माउली माउली रूप तुझे। ये गाना आपने सुना तो होगा ही। वो सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का एहसास है। इस गाने के बोल हमें याद दिलाते हैं कि जब मन सच्ची श्रद्धा से जुड़ता है तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास हमें भीतर से मजबूत बनाता है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब भगवान का मतलब कुछ भी हो सकता है, ये नेचर, ये यूनिवर्स या फिर एक ऐसी शक्ति जो मौजूद है, जो साइंस से भी आगे है। विश्वास करना है तो कर भी सकते हैं और नहीं तो नहीं भी कर सकते। लेकिन यार ये गाना बहुत ही ज़्यादा रूट से फील कराता है। जिंदगी में चाहे कितनी भी भाग दौड़ क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास और सकारात्मक सोच बनी रहे तो हर दिन नया उत्साह लेकर आता है। इसलिए अपने काम के साथ साथ कुछ पल ईश्वर को याद करने के लिए भी ज़रूर निकालिए। अब मेरा ईश्वर से मतलब है उस गहरे एहसास से जो हर किसी को किसी चीज़ पर है। किसी को यूनिवर्स पे है, किसी को नेचर पे है, तो किसी को साइंस पे है, तो किसी को साइंस के आगे कुछ चीज़ों पे है। तो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी श्रद्धा है, लेकिन यार श्रद्धा तो है। इसी दुआ के साथ कि आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति और खुशियाँ बनी रहे। अब बढ़ते हैं अपने अगले शानदार गाने की ओर। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर गीत दिल को छू जाता है और हर पल बन जाता है यादगार। ओनली ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचे, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 10वी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। या सोबतच टॅक्सेशन आणि लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा विजिट mgmu.ac.in।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
4: ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus, N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। वेल यार, सबसे पहले तो आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप सभी को आषाढ़ी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन भगवान विट्ठल और भगवान विष्णु की भक्ति का बहुत ही पावन दिन माना जाता है। आज का दिन हमें श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और अच्छे कामों का संदेश देता है। हम यही कामना करते हैं कि भगवान विट्ठल की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे, आपके जीवन में सुख शांति, अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां बनी रहे। जो भी मनोकामनाएं आपके दिल में हैं वो पूरी हो जाए और आपके जीवन का हर दिन नई उम्मीद और नई मुस्कान को लेकर आए। अगर आज आपका व्रत है, उपवास है, तो पूरे मन से भगवान को स्मरण कीजिए। भगवान से मेरा मतलब है उस शक्ति को जो आपको हर दिन एक नई ऊर्जा देती है। और अगर व्रत नहीं भी है तो भी आज किसी की मदद कीजिए, मीठे शब्द बोलिए और अपने परिवार के साथ प्यार से समय बिताइए। यही इस पावन दिन की सबसे बड़ी सीख है। एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को आषाढ़ी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब इसी शुभ भावना के साथ सुनते हैं और सारे शानदार गाने। बने रहिए आप हमारे साथ इन द शो दिल से, क्योंकि आपकी मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। ओनली ऑन एमजी मनाड़ी पोनेड फिल्म, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आषाढ़ी एकादशी की वारी सिर्फ आस्था और भक्ति की परंपरा ही नहीं बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें साइंटिफिक नज़र से भी समझा जा सकता है। सबसे पहले वारी में लोग कई दिनों तक पैदल चलते हैं। पैदल चलना शरीर के लिए बहुत अच्छा व्यायाम माना जाता है। इससे दिल स्वस्थ रहता है, शरीर चुस्त रहता है और मन भी प्रसन्न महसूस करता है। दूसरी बात, इस दौरान लोग भजन कीर्तन करते हैं और एक साथ चलते हैं। इससे मन का तनाव कम हो सकता है और सकारात्मक सोच बढ़ती है और लोगों के बीच अपनापन महसूस होता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि संगीत और सामूहिक गतिविधियां मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा असर डाल सकती है। इसके अलावा आषाढ़ के मौसम में हल्का और सात्विक भोजन करने की परंपरा भी है। बरसात के समय पाचन शक्ति कुछ लोगों में धीमी हो सकती है, इसलिए हल्का भोजन कई लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। यानी वारी हमें शक्ति के साथ साथ अनुशासन, नियमित चलने की आदत, सकारात्मक सोच और मिलजुल कर रहने का संदेश भी देती है। इसी सुंदर संदेश के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले गाने की ओर। बने रहिए हमारे साथ और एक बार फिर आप सभी को आषाढ़ी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओनली फ्रॉम MGM 90.8 FM साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आर्जमनी शाह आपके साथ। आषाढ़ी एकादशी के दिन तुलसी का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु और भगवान विट्ठल को तुलसी बेहद प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी अर्पित की जाती है। अगर इसे वैज्ञानिक नजर से देखें तो तुलसी एक औषधीय पौधा है। इसके पत्तों में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जिन पर शोध से पता चला है कि उनमें जीवाणुओं और कुछ अन्य सूक्ष्म जीवों के खिलाफ गुण हो सकते हैं। तुलसी का उपयोग पारंपरिक रूप से सर्दी खांसी, पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को सहारा देने के लिए भी किया जाता है। बरसात का मौसम शुरू होने पर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे समय में घर में तुलसी का पौधा लगाना और उसकी देखभाल करना प्रकृति से जुड़ने की एक अच्छी परंपरा भी है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि तुलसी चिकित्सा का विकल्प नहीं है, यदि कोई बीमारी हो तो डॉक्टर की सलाह लेना सबसे जरूरी है। यानी आषाढ़ी एकादशी हमें भक्ति के साथ साथ प्रकृति का सम्मान करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का भी संदेश देती है। इसी खूबसूरत संदेश के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले गाने की ओर। आप सभी को एक बार फिर से आषाढ़ी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बनी रही है हमारे साथ ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आज की इस खूबसूरत शाम में आपने हमारा साथ दिया, हमारे साथ बातें की, प्यारे प्यारे गाने सुने और अपने कीमती समय से कुछ समय निकाला, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज का हमारा साथ आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आया होगा और आपका मन भी हल्का और खुश हुआ होगा। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हर दिन को नई उम्मीद और नई ऊर्जा के साथ शुरू कीजिए। अगर आज आपका व्रत था और व्रत नहीं भी था तो भी मैं आपके लिए भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, आपके जीवन में सुख शांति और खुशियों की कमी ना हो। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी रेडियो स्टेशन पर नई बातों, नए गीतों और नई मुस्कानों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए अपना फेवरेट शो दिल से ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।
1: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचे, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
2: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 10वी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
1: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा व्हिजिट mgmu.ac.in।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्य आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
4: ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, इलेक्ट्रॉनिक Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus, N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

एक बात ना तो मेरे दोस्तों ने सुननी चाहिए और आपकी भी दोस्तों ने सुननी चाहिए, इस वजह से मैं ये बात आज कह रहा हूँ। आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ MGM 90.8 FM, और ये बात सभी उन लोगों के लिए है जो कि अपने दोस्तों के पैसे लेते हैं उधार, वापस करने का नाम वो तो दूर दूर तक कहीं सुना ही नहीं देता है। तो एक न्यूज ऐसी आई थी कि 25 वर्षांनंतर ही मित्राला दिलेला शब्द पाळला आणि 1000 किलोमीटर प्रवास करून मित्राकडून घेतलेले 25,000 रुपये परत केले आणि या प्रामाणिकपणाचं सगळीकडे कौतुक होत आहे। क्या बात यार, अंकल जी है केरल के जिनका नाम था मोहम्मद इस्माइल, इन्होंने 25 साल पहले अपने एक दोस्त से 25,000 रुपए लिए थे अब्दुल रजाक से, तो वो पैसे वापस करने के लिए 1000 किलोमीटर ट्रैवल किया और अपने दोस्त को पैसे उन्होंने लौटा दिए। इसे कहते हैं भाई साहब। और एक हमारे दोस्त यार, छोटी छोटी रकम करते करते कब 10 से 20,000 रुपए होते हैं और लौटाने का नाम ही नहीं लेते। एक दोस्त को मैंने दिया था 2 साल हो गए पैसे 5,000 रुपए और आज तक वो पैसे मेरे आ ही नहीं अकाउंट में। और भी ऐसे बहुत सारे दोस्त है जो कि पैसे लेते हैं और वापस देने का नाम ही नहीं लेते, और उनसे अगर पैसे मांगे ना कहते यार दोस्ती में कहेगा पैसा वापस लेना, तेरा है वो मेरा है और मेरा है वो तेरा है। मतलब उनको जब पैसा चाहिए होता है वो हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं, अगर हमें पैसा चाहिए तो उनका फोन बंद आता है। तर असं काय अनुभव तुमच्या सोबत सुद्धा झाला असेल, कारण की हर एक फ्रेंड समझ गए आप कैसा होता है। तो जरा ये बात अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि एक दोस्त ने उसके पैसे 25 साल के बाद लौटाया, वो भी 25,000 रुपए, और तू भाई मेरे 2500 रुपए अब तक नहीं लौटा रहा है। खैर, स्टे ट्यून।

0: ये सो कॉल्ड आशिक प्रजाति, जी हाँ मैं आशिक प्रजाति इसलिए कह रहा हूँ, किसी भी एरिया में शुरू हो जाते हैं। यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM, आरजे अदनान आपके साथ है। देखो मैं पहले बता दूं कि मैं कुछ प्यार का दुश्मन नहीं हूँ और मैं तैयब अली भी नहीं हूँ।
1: तैयब अली प्यार का दुश्मन, हाय हाय।
0: बट उन कपल्स का मुझे बहुत गुस्सा आता है जो पब्लिक प्लेस के ऊपर सरेआम शुरू हो जाते हैं कुछ भी चीजें करने के लिए। एक ऐसा ही केस सामने आया अपने बीबी का मकबरा, अपना टूरिस्ट प्लेस है भाई, वहाँ पर फैमिलीज आते हैं, बच्चे आते हैं, लोग घूमने आते हैं, तो कई कई कपल्स बसून झाड़ा खाली प्रेम कर देते। अरे भावनो बहिनो, झाड़ा वर प्रेम करा, झाड़ा खाली बसून प्रेम करू नका। पण हे ना कळतच नाहीये, आणि फक्त आपलं बीबी का मकबराच नाही, तुम्ही आपल्या शहरातील वेगवेगळ्या सार्वजनिक ठिकाणी जर गेलात ना तर तुम्हाला हीच परिस्थिती बघायला मिळणार आहे। सो आप सिद्धार्थ गार्डन में जाओ, वहाँ पर भी आपको ऐसे नजारा मिलेगा। बामू यूनिवर्सिटी के जो बैक साइड में जंगल है ना, वहाँ पर जाओ तो वहाँ पर तो बहुत सारे कपल्स आपको दिखाई देंगे। पता नहीं ऐसी क्या गर्मी होती है जो कि पब्लिक प्लेस पर ही उनकी निकलती है। भाई किसी दिन पकड़े गए ना तो बहुत बुरा फंसोगे। और ऐसे कुछ कपल्स पकड़े गए थे, अब उनके ऊपर कार्रवाई वगैरह तो कुछ जो कुछ होगा वो होगा। बट मेरा इतना ही कहना है कि पब्लिक प्लेस पब्लिक की होती है, वहाँ पर आपके प्राइवेट मोमेंट्स एंजॉय करने की प्लेस नहीं होती, तो इतनी बात तो समझिएगा। स्टेडियम।

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

सुनो सुनो ए भाई और बहनो, परमकन भाई छक्कन भाई सामड़ो रे सामड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ जर्नल सिंह, ओ जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM
0: साथ है तो बात है।